0: पुरुष कवन कहा विचार जो तू पावे सह बलिकार
1: निरंकार
0: संकट जाप पर ये हाथ तरे तंदे
1: पानी तो ते उठ सके
0: मुद पलीती का परा होए
1: तैसा बून लिया हो तो ए
0: पर ये मा पप्पा के संग
1: हो तो पेना वे के रंग
0: पुनी पापी या करनाए
1: कका करना लिकल चाहो
0: आपे पीछा पे विकाओ
1: नानक हुक्मी आवो जाहो
0: तीरता त्या दतान
1: जे को पावे तिल का मान
0: सुनिये मनिये मकिता बाओ
1: अंतर्गत तीरत मनाओ
0: सगुन तेरे में नाए कोए
1: दिन गुन कीते पगत न होए
0: स्वासत पनी बरमाओ
1: सात सहन सता मन चाओ
0: कवन सुवेला पत कवन कवन चित कवन अबार
1: कवन सरुति माहो कवन चिर हो आकार
0: बिलना पाया पंत जी होवे लेख पुराण
1: वाकत न पाया का दिया चिल कन ले करान
0: तिचे वर्ण जोगी जाने रुमाओ न कोए
1: जा करता सिर्ति को सचे अपे जाने सोए
0: किव करा का किव सलाए किव वर्णी किव जाना
1: नानका कण सब को आके एक दो एक स्याना
0: वादा साई बादी नाई किता जा का होवे
1: नानक जे को आपा जाने आगे गाना सो है
0: पताला पताला का सगास
1: और क तक बल तके वेर कहन कवात
0: सहस तार कहां कते वा सुनका एक दात
1: लेका होए ता लेके लेके होए वरनास
0: नानक वादा आकिए आपे जाने आप
1: सलाहे इति सत ना पाया
0: नदरी आपे पावे समन न जानिए
1: समन्द सासतान गिर सती मलदान
0: किरी तुन न होवे नीज तिस मनो न विसरे
1: अंतन सिफ्ति केन न अंत
0: अंतन करने दे न अंत
1: अंतन वेकन सुन न अंत
0: अंतन जापे क्या मन मंत
1: अंतन जापे कीत आकार
0: अंतन जापे पारावार
1: अंत करम के ते पललाहे
0: ताके अंतन पाए

0: चापे चाय
1: तरम खंड का ए हो तरम
0: ज्ञान कंक आखो करम
1: खेते पवन पणि संतर खेते कान महेश
0: केजे वर में करी करिए रूप करम के वेश
1: खेते अखरम भूमि मर खेते खेते तू उपदेश
0: केते ईशा सुर केते मंदर देश
1: केते सिर गुरुनाथ खेते खेते देवी वेश
0: केते देव तरन सुन केते रत समंदा
1: खेते अखाणी खेते पाणी खेते पाठ नरेंद्र
0: केते सुरती सेव केते नानक अंतन अंत
1: ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड
0: तिते नाथ को ओतनंत
1: सरम खंड की पाणी रूप
0: से गरिय सर मत मत
1: मत चिते नर बिनर खनन सरम खंड की पाणी रूप चिते करत करिया बहुत अनूप
0: ताके गला कत्या न जाए
1: जेख कहे पिछे पिछते आए
0: तिते गरिय सर मत मंबुत
1: चिते करिया where are we? Is this right? Kitte sara sada ki sad.
0: Karam kan ki vani jor. Kitte hor na koe hor.
1: Titte jor mahabal sur.
0: Timme ram gariya barpur.
1: Titte sita sita me mahe.
0: Take rup na kat na jai.
1: Oh, na ohe marana tage jahe.
0: Chinke ram se man mai.
1: Titte pagat vise ke loa.
0: Gariya nan sacha man soe.
1: Sach khand vise nirankar.
0: Kar kar veke nadranahar.
1: Titte khand mandal vrpand.
0: चेको कहे तंत न अंत
1: तिते लोआ लोआ आकार
0: जीव जी हुकम तवे तिवकार
1: आविके विकसे कर विचार
0: नानक कतन कर सार
1: जट पर तेरा श्रीयार
0: एरन मद्वे तकियार
1: ओकल अकं तप्ताओ
0: अंदाम बाव मृत ताल
1: करिय शब सची टकसाल
0: जिंको न तरम तिंकार
1: नानक नर री नर नहाल
0: श्लोक
1: पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत
0: तिव सुरय तोय दाई दया के ले सगल जगत
1: जय आया मरिया आया वाचे तरुम हदू

0: नानक तेम गुरु लै के तिजु तिनाला जिन्नी नाम दियाया केम शक्त काल नानक तेम गुरु लै के तिजु तिनाला
1: वाहेगुरु जी
0: सिता
1: का खालसा
0: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।